लूट कर दिल को मेरे क्यों ऐसे तड़पाती है, इस दीवाने को तरसा के तू कहाँ जाती है। आंख से मिला ले जरा आंख सुनिए ओए।

आते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो नादान इतना भी नहीं समझते। ये अल्लाह है, हम शुक्र

यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।